अमला नागपूरमेम 8:45 7:40 1:28:60 गीतांजली एक्सप्रेस 1 तास 14 मिनिट उशिरा येण्याची शक्यता. 1:28:70 हावडा CSTM एक्सप्रेस 8 वाजता येणारी ही गाडी 54 मिनिटं उशिरा धावते आहे. 20494 चंदीगड मदुराई स्पेशल एक्सप्रेस सकाळी 9 वाजता नियोजित वेळेवरच. 12721 दक्षिण एक्सप्रेस 9:20 22692 बँगलोर राजधानी एक्सप्रेस 9:25 ज्ञानेश्वरी डिलक्स एक्सप्रेस 12101 9:35 9:15 12850 बिलासपूर एक्सप्रेस 20 मिनिटं उशिरा येण्याची शक्यता. 16788 माता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस 9:50 12949 कविगुरू एक्सप्रेस 10:15 ग्रँड ट्रंक एक्सप्रेस 12616 10:15 12129 आझाद हिंद एक्सप्रेस 9:50 गाडी 27 मिनिटं उशिरा येण्याची शक्यता. 20806 नवी दिल्ली विशाखापट्टणम AP एक्सप्रेस 10:25 तर 11040 महाराष्ट्र एक्सप्रेस 10:40 अधिक माहिती करता प्रवासी रेल्वे विभागाच्या दूरध्वनी क्रमांक 139 माहिती घेऊ शकतात. या सूचना आता हिंदीतून ऐका. संबंधित रेल अधिकारियों से प्राप्त जानकारीनुसार अपनी निर्धारित समय से लेट चल रही गाड़ियां ग्वालियर बेंगलुरु एक्सप्रेस 5:50 का समय 16 मिनट देरी से चल रही है. गाड़ी का नंबर है 11086 5:35 पर आने वाली निजामुद्दीन सिकंदराबाद एक्सप्रेस 12286 1 घंटा 2 मिनट देरी से चल रही है. बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस 03252 देर रात 12:45 पर आने वाली गाड़ी 6:51 देरी से चल रही है. गीतांजलि एक्सप्रेस 12860 7:40 का समय है 1 घंटा 14 मिनट देरी से आ सकती है. तथा हावड़ा CSTM एक्सप्रेस 12870 8 बजे का समय है 54 मिनट से देरी से चल रही है. बिलासपुर एक्सप्रेस 9:15 पर आने वाली गाड़ी 20 मिनट देरी से चल रही है. तथा आजाद हिंद एक्सप्रेस 9:50 का समय 27 मिनट देरी से चल रही है. बाकी सभी गाड़ियां अपने निर्धारित समय से गंतव्य तक पहुंचेगी. अधिक जानकारी हेतु दूरभाष क्रमांक 139 पर यात्री संपर्क कर सकते हैं. रेलवे संबंधी जानकारी यहां पर समाप्त हुई. ये जानकारी आकाशवाणी के नागपुर केंद्र से सुनी. आकाशवाणी से ही नागपुर केंद्र है दिल्ली केंद्रावरील बातम्या.

0: शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया

0: कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर्स म्हणजेच 585 किलोहर्ट्स वर आम्ही आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून बोलत आहोत। श्रोते, सकाळचे 6:05 आणि 30 सेकंद झालेले आहेत। प्रसारित करीत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम अर्चना।

0: बड़ी
1: रहा। हेलो मन भावन
2: आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून म्हणजेच मध्यम लहरी 512.8 मीटर्स अर्थातच 585 किलोहर्ट्स वरून
3: प्रत्येक महिन्याचा चौथा सोमवार
4: साहित्याचा वार
3: नवसाहित्यिकांसाठी उघडेल नवीन द्वार
4: चौथा सोमवार साहित्याचा वार
3: कथा कविता ललित आणि साहित्यिकांच्या मुलाखती
4: आशय घन साहित्यात करूया विहार
3: चौथा सोमवार साहित्याचा वार
4: साहित्य सौरभ तर ऐकायला विसरू नका आकाशवाणी नागपूर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम साहित्य सौरभ
3: प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी संध्याकाळी 6:35
4: हा कार्यक्रम जगभरात कुठेही न्यूज ऑन AIR या ऍप वर तुम्ही ऐकू शकता
3: कार्यक्रम साहित्य सौरभ
4: कार्यक्रम साहित्य सौरभ
3: प्रत्येक महिन्याचा चौथा सोमवार
4: साहित्याचा वार
3: नवसाहित्यिकांसाठी उघडेल नवीन द्वार
4: चौथा सोमवार साहित्याचा वार
3: कथा कविता ललित आणि साहित्यिकांच्या मुलाखती
1: नव्या आशा नव्या दिशा
3: नवी क्षितिज नव्या वाटा
5: देतोय तुमच्या पंखांना उडण्याची आस युवकांच्या सर्वांगीण विकासाची धरून या कास
1: कला साहित्य आणि करिअरला फुलू द्या जोमात
3: मांडून या आपले विचार आपल्याच आवडत्या युववाणी कार्यक्रमात
5: तेव्हा ऐकायला विसरू नका आकाशवाणी नागपूरची निर्मिती असलेला युववाणी कार्यक्रम 585 किलोहर्ट्ज आणि न्यूज ऑन एअर या मोबाईल ऍप वर दर गुरुवारी संध्याकाळी 5:30
1: तर ऐकायला विसरू नका
3: युववाणी कार्यक्रम
6: मैं नेत्रा खेड़कर मैं आज अपना सुंदर अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ मुझे ऑल इंडिया रेडियो में आने और इस विषय कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल पूरे होना हम सभी के लिए बहुत खास अवसर है सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगी इतने लंबे समय से ऑल इंडिया रेडियो देश भर के लोगों तक समाचार संगीत संस्कृति शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाता आ रहा है इसने अनेक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है और लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है ऐसे महान और प्रतिष्ठित संस्थान के 90 वर्ष पूरे होने के समारोह में शामिल होना मेरे लिए एक यादगार पल है यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत कुछ सीखा इस अवसर ने मेरे आत्मविश्वास को भी बढ़ाया मैं ऑल इंडिया रेडियो की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करती हूँ यह अनुभव मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में हमेशा शामिल रहेगा

0: है ये?
1: अरे पिक्चर क्लियर नहीं है।
2: अरे पर्दा ही मेला है।
3: अरे कुछ आता है कि नहीं?
1: सच है भैया, सुपर निर्मा से मिले सुपर सफेदी।
4: श्रोते हो, यावेळी आपण ऐकत आहात सुगम संगीताचा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून। आज या कार्यक्रमात शर्बानी चक्रवर्ती यांनी गायलेली हिंदी भजनं आपण ऐकत आहात। ऐकूया ही पारंपरिक रचना।

0: श्रोतेहो, या गीताबरोबरच सुगम संगीताचा कार्यक्रमाची वेळ आता संपलेली आहे. या कार्यक्रमात आज आपण ऐकलीत शर्बानी चक्रवर्ती यांनी गायलेली हिंदी भजनं. सुगम संगीताचा हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रानं प्रसारित केला. मध्यम लहरी 512.8 मीटर्स म्हणजेच 585 किलोहर्ट्सवर आम्ही आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून बोलत आहोत. आपण आमचे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील लाईव्ह ऐकू शकता. श्रोते हो, थोड्याच वेळात दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करू समाचार प्रभात या हिंदीतून दिल्या जाणाऱ्या बातम्या ठीक 8 वाजता, आणि 8:15 मॉर्निंग न्यूज या इंग्रजीतील बातम्या, त्यानंतर 8:30 मुंबई केंद्रावरून राष्ट्रीय मराठी बातमीपत्र. कृपया प्रतीक्षा करा.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. और अब मुख्य समाचार. शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार. लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त. अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान. और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा. अब समाचार विस्तार से. शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा.
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी. शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे. नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा. संदीपन दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता.
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया. विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी. कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है.
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है. हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का

0: संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकाय योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
0: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के

0: 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार की विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है।

0: दैनिक जागरण लिखता है आज बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे,
0: ए माती रे, मोरो मोते,
1: मोरो मोते,
0: माती के,
1: माती के,
0: सुमिलो,
1: सुमिलो,
0: माती के सुमिलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते,
1: ए माती ते,
0: ए माती ते जीवन, ए माती ते, ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना, ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
1: सोबी,
0: जी कैसे ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीवन सोबी आकी, आकी दो बार आकी, आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आकाश श को बोलते हैं वहां ख की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में, आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो। दूर आका हार, रोहन कियोनु, लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर, ख नहीं बोलना, ह, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे।
0: इसके आगे है

आहा आहा, फिर मातिर बुकुत। हाँ, मातिर बुकुत। मौनोर मालोती, बूटो लो। मौनोर मालोती बूटो लो, इसके बाद फिर वही आ जाएगा, एई माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतरा है मौनोर कोरोनी रे। हुरोर हुरोर पापोरी रे, पापोरी रे आजी। इतना हो गया ना। आगे हुकुमार, थापो नाहुजुवा। हुकुमार थापो नाहुजुवा, आगे लिखा है ना। हुंदौर खुदीनौर, खुदीनौर नहीं खनी ख, खुदीनौर नौतून दृष्टि, ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि दृष्टि, शनि सही बोलना, दृष्टि दृष्टि। कौनो ना हुआ, आगे ना। अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं। स्वर दीजिए जरा।

ऐसे बोलना एक बार और दूसरे ना हुआ, दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना, खून दौर से लो। इसमें और हल्का

0: वृंद गान पाठ या कार्यक्रमात आसामी भाषा पाठ अंतर्गत आपण ऐकलत सतीश दास यांचं गीत ए माटीरे. याबरोबरच वृंदगान पाठ हा कार्यक्रम इथेच संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला. मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर्स म्हणजेच 585 KHz आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. श्रोते हो, यानंतर प्रसारित करीत आहोत केअर हॉस्पिटल प्रायोजित कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर. हा कार्यक्रम ध्वनिमुद्रित आहे. यात आज श्वसनासंबंधीचे आजार आणि उपचार या विषयावर मार्गदर्शन करत आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर दीती गंधसिरी. कृपया प्रतीक्षा करा कार्यक्रमाची.
1: सादर करीत आहोत कार्यक्रम केअर हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत केअर हॉस्पिटल पंचशील स्क्वेअर नागपूर.
2: श्रोते हो, नमस्कार. केअर हॉस्पिटल पंचशील स्क्वेअर नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर या कार्यक्रमात मी सारिका तुम्हा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. श्रोते हो, आजचा विषय आहे श्वसन रोग आणि त्यावर उपचार. आणि याविषयी आपल्याला आज मार्गदर्शन करणार आहेत केअर हॉस्पिटल नागपूरच्या छाती रोग तज्ज्ञ डॉक्टर दीती गंधसिरी. डॉक्टर दीती गंधसिरी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं.
3: थैंक यू सो मच मैम. नमस्कार, मैं डॉक्टर दीती गंधसिरी, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट केयर हॉस्पिटल नागपुर से हूँ. आज के इस कार्यक्रम में हम रेस्पिरेटरी हेल्थ के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे.
2: जी जरूर. डॉक्टर दीती गंधसिरी, हम ये सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आमतौर पर हमारे देश में अस्थमा के रुग्ण ज्यादा पाए जाते हैं, तो अस्थमा क्या होता है ये हम समझना चाहते हैं आपसे.
3: ओके. अस्थमा एक क्रॉनिक लंग कंडीशन है जो यूजली फेमिलियल या पारंपरिक होता है. इसमें एलर्जन के एक्सपोजर के वजह से सांस की नलियों में अक्सर सूजन आ जाता है, जिससे पेशेंट को एपिसोडिक वीजिंग होता है, खांसी होता है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है.
2: अच्छा, और क्या हमारे देश में आमतौर पर कॉमन है अस्थमा होना?
3: जी हाँ, अस्थमा काफी कॉमन है इंडिया में. लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोग अस्थमा से अफेक्टेड है अपने देश में. और ये ग्लोबली 13% बर्डन कैरी करता है. अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अस्थमा रिलेटेड डेथ्स भी ग्लोबली सबसे ज्यादा अपने देश से है. तो ये लेट ट्रीटमेंट या पुअर कंट्रोल की वजह से होता है.
2: अच्छा, और फिर इसमें कुछ एज लिमिट होती है कि किसी एज ग्रुप में ही अस्थमा हो सकता है या ऐसा कुछ है?
3: हाँ, यूजली अस्थमा जो है डायग्नोज होता है बचपन में या टीनेजर्स में. अडल्ट ऑनसेट अस्थमा थोड़ा सा रेयर होता है, बट ऐसे नहीं कि नहीं होता, बट यूजुअली यंग एज में ही डायग्नोस हो जाता है.
2: अच्छा, लेकिन क्या अस्थमा ये जो बीमारी है वो हेरिडिटरी होती है?
3: यस यस, ये फैमिलियल होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, एंड यूजुअली इवन पेरेंट्स में नहीं है तो एक जनरेशन स्किप होके ग्रैंड पेरेंट्स का अस्थमा जो है ग्रैंड चिल्ड्रन में पाया जा सकता है.
2: अच्छा, और इनहेलर्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं. कोई ग्रुप ऐसा होता है कि जो इनहेलर्स यूज नहीं करते.

0: करना चाहते, तो क्या ये एडिक्टिव होते हैं या इन्हेलर्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे?
1: इन्हेलर्स बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं होते, ये एक मिथ है। इन्हेलर्स जो है काफ़ी सेफ, काफ़ी इफ़ेक्टिव और टारगेटेड ट्रीटमेंट है जो डायरेक्टली सूजे हुए सांस की नलियों तक पहुंचता है, सूजन रिलीफ करता है और अस्थमा पे कंट्रोल जल्दी अचीव करने में मदद करता है। वर्ल्ड अस्थमा डे अभी 5 मई को होके गया है। इसका जो मेन मुद्दा ये था कि एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्हेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि अस्थमा के पेशेंट्स में इन्हेलर की यूज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। आई थिंक थोड़ा बहुत अपने सिनेमा में या मीडिया में ऐसे नेगेटिवली दिखाया जाता है कि विलन को लास्ट में इन्हेलर नहीं मिलने की वजह से वो फाइट लड़ नहीं पाता या डेथ हो जाती है। तो ऐसे एक दिन स्किप करने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ जाना ऐसे कुछ होता नहीं है, बट डेफिनेटली डेली यूज़ करने से अच्छा कंट्रोल अपन अचीव कर सकते हैं अपने अस्थमा पे।
0: अच्छा, और हम ये जानना चाहते हैं कि अस्थमा और एलर्जी, ये इनका कुछ कनेक्शन है?
1: बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। लगभग 60-80% अस्थमा पेशेंट्स एलर्जी ड्रिवन होते हैं, मतलब एलर्जी या एलर्जन से एक्सपोज होने के बाद सांस की नलियों में सूजन आ जाता है और अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो जाता है।
0: अच्छा, तो आमतौर पर फिर कैसे एलर्जी को पहचाने?
1: आमतौर पे एलर्जी को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज ये है कि सिम्टम्स को जानना। एलर्जी के सिम्टम्स बहुत सीजनली वेरिएशन होता है। ठंडी के समय, बारिशों के समय जो है सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सुबह और शाम में भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत से लोगों को अर्ली मॉर्निंग जो सिम्टम्स होते हैं या रात के तौर पे जो सिम्टम्स होते हैं वो साइक्लिकली या डायनली भी डिफरेंस रहता है। तो सिम्टम्स जो है कभी बहुत ज़्यादा रहते हैं, कभी बिल्कुल नहीं रहते। तो ये एपिसोडिक नोटिस करना इम्पॉर्टेंट है। बाकी सिम्टम्स के तौर पे पेशेंट्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारा छींकना, नाक से पानी बहना, खांसी आना, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होना या कफ का प्रोडक्शन ज़्यादा होना, सांस लेने में दिक्कत होना, अगर स्किन एलर्जीज है तो शरीर पे इचिंग होना, चट्टे पड़ना, ये सब एक्सपीरियंस किया जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन पहले पेशेंट खुद बताता है कि सिम्टम्स जो है साइक्लिकली है, डायनली है, सीजनली चेंज हो रहे हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर्स कैसे पता करते हैं कि कुछ ब्लड टेस्ट है जिससे पता चलता है कि पेशेंट की तहसीर एलर्जिक है कि नहीं। और स्पेसिफिक अगर एलर्जन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी ब्लड टेस्ट हैं, या फिर स्किन प्रिक टेस्ट करके एक टेस्ट रहता है जिससे पता चलता है कि कौन से पर्टिकुलर एलर्जन की वजह से पेशेंट के एलर्जीज ट्रिगर हो रहे हैं।
0: डॉक्टर दीति गंधसिरी, आप हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रही है श्वसन रोग के बारे में। अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि निदान तो कैसे होता है, ये आपने हमें बता दिया, अब इसका इलाज उपलब्ध है और क्या रुग्णों सामान्य जीवन जी सकता है फिर?
1: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, एलर्जी जो है इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल में किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि कोई एलर्जन की वजह से ही एलर्जी ट्रिगर होती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का पार्ट यही है कि एलर्जन को अवॉइड करना। बहुत सी बार जैसे मैंने बताया पेशेंट खुद बताता है कि मैडम हमें डस्ट से एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है, कोई पर्टिकुलर फूड आइटम से एलर्जी है या कोई दवाई से एलर्जी हो रही है। आइडेंटिफाई करके अवॉइड करना पहला स्टेप है। दूसरी बात, बाकी मेडिकेशंस काफ़ी अवेलेबल है जो एलर्जिक सिम्टम्स को कंट्रोल में रख सकते हैं या कम किए जा सकते हैं। अगर ओरल मेडिकेशन से नहीं होता है तो नए टेक्निक्स हैं जैसे इम्यूनोथेरेपीज बोलते हैं, जिससे सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी या सब लिंगुअल इम्यूनोथेरेपी के तौर पर जो एलर्जन से जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको हम कम कर सकते हैं दवाइयों के साथ।
0: अच्छा, यानी अस्थमा या एलर्जी का जो भी रुग्ण है वो सामान्य जीवन जी सकता है?
1: ऑफ कोर्स, काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ है, डेविड बेकहम करके आप जानते होंगे, फुटबॉलर हो, या अपने बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा खुद भी एंडोर्स करती है कि मुझे अस्थमा है। तो ऐसे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनफैक्ट स्पोर्ट्समैन है जिनको अस्थमा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो लाइफ है उसमें बदलाव नहीं आती, लाइफ की लॉन्जिविटी में बदलाव नहीं आती।
0: जी
1: तो आप सभी चीज़ें वो कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, बट कंट्रोल अचीव करना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए दवाइयाँ ज़रूरी रहती है।
0: और दवाइयों के साथ साथ खान पान पर ध्यान देना भी आवश्यक है?
1: खान पान पे ध्यान भी देना आवश्यक है। ओबेसिटी जो है अस्थमा को फ्लेयर अप करने के चांसेस रहते हैं. इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो एलर्जी को ट्रिगर करती हैं. बहुत से
0: अच्छा
1: पेशेंट्स में सिट्रस फ्रूट्स या खट्टे फल जो है वो अस्थमा या एलर्जीज ट्रिगर करते हैं. तो आइडेंटिफिकेशन

0: और अवॉइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है
1: जी. जरूर.
2: श्रोतेहो, आपण ऐकत आहात केअर हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम.
1: अस्थमा की जानकारी तो आपने दे दी डॉक्टर दीति गंधसिरी. अब जो ट्यूबरक्यूलोसिस है इसके नाम से ही लोग डरते हैं आमतौर पर, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे.
0: तो इंडिया में दुनिया के 25-30% टीबी के केसेस हैं. मतलब ग्लोबल बर्डन का सबसे बड़ा हिस्सा अपना देश है टीबी में. टीबी मोर्टैलिटी भी देखा जाए, मतलब डेथ्स टीबी की वजह से देखा जाए, तो 2024 की जो स्टैटिस्टिक्स थे उसमें हमने देखा कि ऑलमोस्ट 21 लाख लोग अपने देश में उनकी डेथ हुई है ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से. तो डेफिनेटली ट्यूबरक्यूलोसिस इंडिया में एक सीरियस प्रॉब्लम है. डरना है नहीं डरना, तो डरना नहीं है क्योंकि दवाइयाँ अवेलेबल है, बट सीरियस प्रॉब्लम है.
1: अच्छा, तो टीबी में सामान्यतः क्या लक्षण पाए जाते हैं?
0: इसको मैं चालू करना चाहूंगी कि टीबी जो है वो शरीर के कोई भी अंग को अफेक्ट कर सकता है. टीबी ब्रेन का हो सकता है, किडनी का हो सकता है, बोन का हो सकता है, बट सबसे कॉमन जो है ट्यूबरक्यूलोसिस लंग्स का होता है या फेफड़ों का होता है.
1: अच्छा.
0: तो इसके सिम्टम्स ये रहते हैं कि पेशेंट को खांसी रहता है 2 हफ्तों से ज्यादा, कफ का बनना बढ़ जाता है, एडवांस्ड केसेस में कफ में खून निकलने लगता है, हल्का हल्का बुखार होता है, शाम के समय पसीना छूटना, खाने की इच्छा ना होना और वजन तेजी से घटना, ये कॉमन सिम्टम्स है.
1: अच्छा डॉक्टर, हम ये जानना चाहते हैं कि टीबी के जो पेशेंट्स हैं वो कम्प्लीटली ठीक हो सकते हैं?
0: बिल्कुल हो सकते हैं. ट्यूबरक्यूलोसिस का अगर ट्रीटमेंट पूरा लिया जाए तो पेशेंट को 6 महीने बाद, 9 महीने बाद या 12 महीने बाद कम्प्लीटली टीबी फ्री डिक्लेयर किया जाता है. बट इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट की इम्यूनिटी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस कितनी थी, उसको और कुछ बीमारियां थी क्या जिसके वजह से इम्यूनिटी और कमजोर होती है. ट्यूबरक्यूलोसिस का जो स्ट्रेन था वो दवाइयों से रिस्पॉन्ड करने वाला स्ट्रेन है या रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, टीबी कितने एडवांस्ड लेवल तक पहुंच चुकी थी, वो सब इम्पॉर्टेंट है डिटरमिन करने में कि टीबी का ट्रीटमेंट का लेंथ कितना चलेगा और वो ट्रीटमेंट की सक्सेस कितनी होगी.
1: अच्छा, तो जो दवाइयां हैं वो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है फिर?
0: नहीं, अगर ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्यूलोसिस है, मतलब जो आम ट्यूबरक्यूलोसिस है, जो सबसे सेफेस्ट मेडिकेशन से रिस्पॉन्ड करने वाला टीबी है, तो 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 9 महीने का ट्रीटमेंट रहता है, उसके बाद ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है. अगर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस है तो 9 महीने या 12 महीने, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द स्ट्रेन या फिर जो रेजिमेंट पेशेंट के लिए सेलेक्ट किया गया हो.
1: अच्छा, और डॉक्टर दीति, आपने ये भी बताया कि ठीक हो सकते हैं रुग्ण और लाइफ लॉन्ग उन्हें दवाई लेने की जरूरत नहीं है.
0: करेक्ट.
1: तो लेकिन जैसे टीबी अगर उनका ठीक हो गया तो प्रॉब्लम वही खत्म हो जाती है या उन्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी?
0: डेफिनेटली सावधानी बरतनी पड़ेगी. ट्यूबरक्यूलोसिस जब भी पेशेंट को अफेक्ट करके चला जाता है तो उसकी कुछ निशानियां छोड़ के जाता है. 50-60% लोगों में जो है लंग्स में कुछ स्कारिंग हो या कुछ डैमेज अपने को दिखना है आगे जाके, जब भी एक्सरे करते हैं पेशेंट का या सीटी स्कैन करते हैं, बहुत से केसेस में ये जो स्कारिंग है या फिर ये जो डैमेज है इससे आगे जाके पेशेंट को ज्यादा अफेक्ट नहीं होता. बट कुछ पेशेंट्स में जो है लाइफ लॉन्ग थोड़ा बहुत लंग्स की कैपेसिटी कम होना, ब्रेथलेसनेस होना, खांसी होना, बार बार इन्फेक्शंस होना और कुछ परसेंट पेशेंट्स में रीएक्टिवेशन होना, मतलब वापस टीबी का एक्टिवेशन होना वही डैमेज लंग्स में.
1: अच्छा,
0: हो सकता है.
1: तो
0: ऐसे पेशेंट्स में आई थिंक कि जब भी कोई सिम्टम्स हो, खांसी हो, सांस लेने में दिक्कत हो, फीवर फिर से अगर आ रहा हो, तो डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए पहली बात. और दूसरी बात, जब भी कोई भी डॉक्टर के पास कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो उनको इन्फॉर्म करना ये जरूरी है कि मुझे 10 साल पहले टीबी हुआ था या मुझे बचपन में टीबी हुआ था, ताकि उस हिसाब से डायग्नोसिस डॉक्टर के मन में आए.
1: जी जरूर. डॉक्टर दीति गंधसिरी, आपने अस्थमा और टीबी के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है. अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम ये पूछना चाहते हैं कि सीओपीडी के बारे में भी लोग कम जानते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे.
0: सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर. ये समझिए आप कि अस्थमा का वो बड़ा भाई है जो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा है ना. तो अस्थमा जैसे पारंपरिक है, फैमिलियल है, एलर्जी ड्रिवन है, सीओपीडी में भी

0: सिमिलर सिम्टम्स रहते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है, वीजिंग रहता है, बट एस्थमा जैसे एपिसोडिक रहता है, सीओपीडी वैसे नहीं रहता, कंटिन्यूअस या फिक्स्ड डैमेज रहता है लंग्स में. और ये बचपन में नहीं, ये बुढ़ापे में पाया जाता है, मोर देन 50 या 60 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में. तो ये क्रॉनिक लंग डिजीज जिसमें परमानेंट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यूजुअली होता है जब पेशेंट या वो इंसान जो है क्रॉनिकली कुछ पल्यूशन, स्मोक या इरिटेंट से एक्सपोज हुआ हो. तो ये कॉमनली स्मोकर्स में पाया जाता है ओवर द एज ऑफ 50 इयर्स.
1: अच्छा, तो यानी अभी जो स्मोकिंग कर रहे हैं उन्हें अभी वो पाया नहीं जाएगा, लेकिन उम्र के एक पड़ाव के बाद उनमें
0: डेफिनेटली
1: वो देखा जाएगा।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ कुछ आजकल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्मोकिंग या वेप यूज एस्थमा जिनमें है, अगर वो ऑलरेडी स्मोक कर रहे हैं, तो वो सीओपीडी में अर्ली कन्वर्जन हो सकता है.
1: अच्छा
0: तो मतलब जो एस्थमा इनहेलर से कंट्रोल में आया जा सकता है, लंग कैपेसिटी मेंटेन की जा सकती है, वो एक फिक्स्ड डैमेज बन जाता है अगर पेशेंट्स अंडरलाइंग ऑलरेडी इश्यूज है और आप स्मोक कर रहे हो. एक्सेसिव स्मोकिंग के वजह से, एक्सेसिव एक्सपोजर टू इरिटेंट्स या स्मोक के वजह से अर्ली ऑनसेट सीओपीडी भी दिखाया जाता है. बट जो अभी स्मोकिंग कर रहा है, उनको अगर लगता है कि आज मुझे कुछ नहीं हो रहा, खांसी नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल बाद वो लंग्स में डैमेज दिखाई ना दे.
1: अच्छा तो सीओपीडी क्या सिर्फ मेल्स में दिखता है या मेल फीमेल दोनों इक्वल रेशो है?
0: मेल्स में डेफिनेटली ज्यादा दिखता है बिकॉज स्मोकर्स में ज्यादा कॉमन है. बट इंडिया में एक अलग ग्रुप है फीमेल सीओपीडी का, जो दिखता है उन पेशेंट्स में जिनमें चूल्हा स्मोक एक्सपोजर हो या बायोमास फ्यूल एक्सपोजर हो. तो ये पोस्ट बायोमास एक्सपोजर के वजह से लंग्स में वही चेंजेस आते हैं जो स्मोकर्स में आते हैं.
1: जी
0: तो फीमेल्स ड्रिवन सीओपीडी अपने यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन में काफी ज्यादा पाया जाता है, एंड स्पेशली दोस्त जो चूल्हा यूज करते हैं फॉर
1: जी
0: कुकिंग.
1: हाँ, श्रोते हो आपण ऐकतोय केअर हॉस्पिटल पंचशील स्क्वेअर नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम, आणि आजचा विषय आहे श्वसन रोग आणि त्यावर उपचार. आणि यासाठी आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत केअर हॉस्पिटल नागपूरच्या छाती रोग तज्ज्ञ डॉक्टर दीती गंधसिरी.
2: श्रोते हो आपण ऐकत आहात केअर हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम.
1: और सीओपीडी ना हो इसके लिए क्या सावधानी बरतनी होगी?
0: सीओपीडी ना हो उसके लिए सावधानी ये बरतनी होगी, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी तक बताया वो है स्मोकिंग बंद करना. अगर वुड फायर से आप खाना पका रहे हो या चूल्हे से खाना पका रहे हो, तो वो स्विच करके स्मोकलेस चूल्हा या गैस पे स्विच करना बहुत ज़रूरी रहेगा. तीसरी चीज़, अगर आप इंडोर या आउटडोर पोल्यूशन से एक्सपोज हो रहे हो, आप फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत स्मोक प्रोडक्शन है, आप ट्रैफिक कंट्रोल में हो और डे इन एंड डे आउट व्हीक्यूलर स्मोक आप एक्सपोज कर रहे हो, तो उस हिसाब से सेफ्टी मेजर्स भी लेना ज़रूरी रहेगा. तो अवॉइडिंग एक्सपोजर टू इरिटेंट्स या स्मोक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आगे जाके लंग्स में सीओपीडी के चेंजेस ना हो. इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, अगर कंट्रोल अर्ली ऑन अच्छा कंट्रोल अचीव नहीं हुआ, तो वो पेशेंट सीओपीडी में कन्वर्ट होने में वक्त नहीं लगता, अगर वो स्मोक नहीं भी करते हों तो भी. तो अगर कोई अंडरलाइंग लंग इश्यूज है, उनको अर्ली ऑन टैकल करना जरूरी है ताकि आगे जाके वो फिक्स प्रॉब्लम ना बने.
1: जी जरूर. और अस्थमा और टीबी से रिलेटेड कोई मिथ्स है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
0: एस्थमा से रिलेटेड मिथ जो मैंने अभी बात किया, वो मुझे लगता है क्योंकि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी में है, उनमें एक घबराहट सी होती है इनहेलर यूज करने की. तो वो सबसे बड़ा मिथ है जो अपन ने बात किया है. एंड आई थिंक ये पूरे टॉक में अगर वो एक भी संदेश में पहुंचा पाऊं लोगों तक कि इनहेलर्स से आदत नहीं लगती, इनहेलर्स खराब नहीं है, तो वही वही बहुत बड़ी बात है. टीबी से रिलेटेड मिथ ये मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि टीबी जो है पारंपरिक है, या मेरे परदादा में अगर है तो बच्चे में आ सकता है, तो ये बात गलत है. तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है, जैसे कोविड के बारे में बहुत लोगों को अवेयरनेस हो चुका था वो महामारी के वजह दौरान,

0: तो ट्यूबरक्यूलोसिस भी एक रेस्पिरेटरी पैथोजन है जो खांसने, छींकने से, बहुत देर बात करने से हवा में फैलता है और उसको इनहेल करने के बाद पेशेंट में इन्फेक्शन होता है, ना कि पारंपरिक या फैमिलियल है ना। तो अगर किसी को मैं पूछती हूँ कि आपको कभी टीबी हुआ था, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमारे खानदान में किसी को ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं हुआ, बट वो खानदान ही नहीं है, वो आपको कहीं पे भी एक्सपोजर हो सकता है।
1: अच्छा
0: और ट्यूबरक्यूलोसिस जो है, लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस, मतलब 40% लोग हम में ट्यूबरक्यूलोसिस से कभी ना कभी एक्सपोज हो चुके हैं, है ना। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जब भी इम्यूनिटी अगर अपनी अच्छी रहे, तो वो एक्सपोजर जो है इन्फेक्शन में नहीं बदलता।
1: जी जरूर।
2: श्रोतेहो आपण ऐकत आहात केअर हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
1: और डॉक्टर दीदी गंधसिरी, आमतौर पर हम हमारे आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग खर्राटे लेते हैं, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, और क्या इसके भी दुष्परिणाम हो सकते हैं?
0: बिल्कुल। एंड जब भी हम सोते हैं, अगर सांस फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती, किसी वजह से सांस में रुकावट हो रही है, वो पैसेज में रुकावट हो रही है नाक से लेके फेफड़ों तक, तो तब हमें वो स्नोरिंग या खर्राटों की आवाज़ आती है। ज़्यादातर पेशेंट्स में जो है गले में रुकावट हो जाती है, सांस फेफड़ों तक पहुंच नहीं पाती, तो पेशेंट से बाहर खर्राटों की आवाज़ अपने को निकलती है। तो सांस जब फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है खून में ड्रॉप हो जाता है। तो रात भर के 8 घंटे में जब पेशेंट को रिस्टोरेटिव स्लीप मिलना चाहिए, रिलैक्सिंग स्लीप मिलना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा खून में कम होने की वजह से बॉडी के हर एक अंग पे असर पड़ता है उसका। तो वो जो है इवेंचुअली बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स तो लीड कर सकता है,
1: अच्छा।
0: तो ये काफ़ी डेंजरस है। एंड 70% लोग जो स्नोर करते हैं उनमें ये बीमारी रहती है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं।
1: तो सबसे पहले ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले जो है वो पेशेंट्स ने डॉक्टर को रिपोर्ट करके एक स्लीप स्टडी कराना ज़रूरी है ना। स्लीप स्टडीज एक वन नाइट का स्टडी है, जिसमें पेशेंट अपने ही घर पे सोएगा या सोएगी, और उस पर वो मॉनिटर्स लगाए दिए जाएंगे, और रात भर के एनालिसिस से अपने को पता चलता है अगले दिन कि ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन थी कि ड्रॉप हुई, पल्स रेट में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है कि नहीं, और कितने घंटे वो पेशेंट ने स्नोर किया रात भर में।
1: अच्छा।
0: इससे वी कैन असेस कि पेशेंट को सही में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या नहीं है।
1: तो इसमें भी दवाइयाँ दी जाती हैं?
0: इसका इलाज जो है, अगर पेशेंट को माइल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, मतलब हल्का है, तो यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि पेशेंट ने वेट रिड्यूस करना चाहिए सिग्निफिकेंटली, लाइफस्टाइल के तौर पे चेंजेस लाने चाहिए, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज हुआ, स्ट्रक्चर्ड स्लीप टाइम हुआ, सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन या मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद करना है, तो ये स्लीप हाइजीन हैबिट्स बोलते हैं इसे। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस एंड वेट रिडक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है खास करके। और कुछ पेशेंट में अगर माइल्ड स्लीप एपनिया है, हम बोलते हैं कि पीठ पे सोने के बजाय एक साइड पे सोया करो,
1: करवट लेके।
0: करवट लेके सोया करो, ताकि जो है स्लीप एप जो स्नोरिंग है वो कम हो जाता है वो साइड इसमें। बट पेशेंट्स को अगर मॉडरेट या सिवियर स्लीप एपनिया है, मध्यंतर या काफ़ी तीव्र स्लीप एपनिया है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम रेकमेंड करते हैं सी पैप मशीन। वो मशीन रात में पेशेंट को लगा के सोना है, ताकि जो जहाँ पे रुकावट है सांस की रुकावट, वो बाईपास करते हुए हवा अंदर तक जाएगी, तो रात भर में पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि स्लीप एपनिया अगर अनट्रीटेड हो, तो कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के क्या हो सकते हैं। तो जब स्लीप एपनिया अनट्रीटेड होता है, दिन में पेशेंट जो है स्लीपी रहता है, ड्राउजी रहता है, नींद आती रहती है, बैठे बैठे झपकी ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके परिवार में देखा होगा, कोई तो ऐसे चाचा हो, मामा हो, यूजली मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है ओवर द एज ऑफ 45, जो बैठे बैठे झपकी ले रहे हैं, नींद आ जा रही है। तो ये काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि काफ़ी वेहिक्यूलर एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इसकी वजह से होते हैं। पेशेंट्स गाड़ी चलाते चलाते झपकी ले लेते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम है पेशेंट्स में, कि दिन में नींद आने लगती है। इसके अलावा

0: कंसंट्रेशन कम हो जाता है, पेशेंट जो है भूलने लगता है कि कुछ क्या रखा है, क्या करना है, ब्रेन फॉग होता है, मतलब क्लियरली सोच नहीं पाता पेशेंट। तो ये सब जो है डे टाइम सिम्टम्स पेशेंट के रहेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि अंदर ही अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, रात के 6 घंटे में या 8 घंटे में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर का मेटाबॉलिज्म डीरेंज होकर पेशेंट को डायबिटीज डेवलप होने लगता है, हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है, स्ट्रोक या पैरालिसिस का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सब जो है नेगेटिव साइड इफेक्ट्स, ये खर्राटों के तब पेशेंट को नहीं पता चलता, बट ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू ईयर्स धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। पेशेंट को पहले कभी बीपी शुगर नहीं था, फिर 3-4 साल बाद बीपी शुगर डेवलप होने लगा है, वजन बढ़ने लगता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, पैरालिसिस का रिस्क बढ़ता है, और इस सब का जड़ कारण जो है वो वापस जाता है खर्राटों तक।
1: अच्छा, इतना बड़ा वो परिणाम कारक है।
0: यस यस, एंड इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोगों में, आम जनता में ऐसा मिथ है कि लोग जो खर्राटे लेके सो रहे हैं दूसरे को सोने नहीं देते बट खुद आराम से सो जाते हैं, बट ये बहुत गलत बात है, क्योंकि खुद वो पेशेंट अंदर ही अंदर उसके ऑर्गन्स के ऑर्गन्स पे बहुत असर पड़ रहा है। वो
1: इसीलिए डॉक्टरी सलाह ज्यादा जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है। जब भी आपने नोटिस किया कि आप खुद या आपके पार्टनर या कोई चहेते स्नोर कर रहे हैं जोर जोर से, दिन में थोड़ी सी नींद आ रही है, इमीडिएटली कंसल्ट स्पेशलिस्ट, जिससे जो टेस्ट किया जा सकता है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो उसका इलाज भी किया जा सकता है।
1: जी जरूर। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि अस्थमा हो, टीबी हो या सीओपीडी हो, चाहे वो स्नोरिंग हो, तो डॉक्टर को कब मिलना चाहिए?
0: आइडियली एक बॉल पार्क में मुझे लगता है कि कभी भी अगर सर्दी खांसी हो, सांस लेने में दिक्कत हो, 3 से 4 दिन तक अगर आपने खुद के घर के नुस्खे अपनाए, ओवर द काउंटर फार्मेसी से दवाइयाँ ले ली, 3 से 4 दिन के बाद अगर सिम्टम्स कम नहीं हुए तो कोई भी पास में अस्पताल को जाना चाहिए। स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन मुझे लगता है कि ज़रूर लेना चाहिए। अगर पेशेंट स्नोरर है, स्नोर कर रहा है, अगर खांसी 2 हफ्तों से ज़्यादा चल रही हो, सांस कभी भी फूल रही हो, सीने में टाइट लग रहा हो, तो ऐसे सब जब सिम्टम्स है, आई थिंक स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन जरूरी रहता है वो समय पे।
1: डॉक्टर दीति गंधसिरी, जो रुग्ण श्वसन रोग से ग्रसित है,
0: जी
1: तो उनके लिए फिर कुछ वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल है, और अगर है तो उन्होंने वो कब कब लेने चाहिए?
0: ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी इश्यूज में वैक्सीन्स का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लंग्स जो है एट ऑल टाइम्स एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड रहते हैं, तो बाहर से वायरसेस, बैक्टीरिया, जो है फंगल स्पोर्स अंदर तक पहुंच के इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो 2 मेन प्रकार के वैक्सीनेशन रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए है। एक तो है फ्लू या इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरल इलनेस है जो मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर जो इम्यूनिटी जिनमें कम है उनमें, लंग्स में भी अफेक्ट कर सकता है। वो हर साल उसके 2 पीक्स रहते हैं, कि जब हम देखते हैं कि आसपास सब खांस रहे हैं एक पर्टिकुलर सीजन में या मंथ में। तो ये इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए साल में एक बार इन्फ्लुएंजा का लस लगता है या वैक्सीन लगता है, जो मार्च या अप्रैल के टाइम पे नया स्ट्रेन रिलीज होता है। आइडियली सबने इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाना चाहिए। अगर सब नहीं लगा रहे हैं तो स्पेशली जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज है, जैसे जिनको अस्थमा है, तो वायरल इन्फेक्शन बहुत बड़ा ट्रिगर होता है अस्थमा में, जिनको अस्थमा है, जिनको कोई क्रॉनिक लंग इश्यूज है, जैसे सीओपीडी हुआ या और कोई क्रॉनिक लंग इश्यूज है, या पेशेंट्स जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओल्ड एज है, तो ऐसे पेशेंट्स में साल में एक बार इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए प्रोटेक्शन के तौर पर। दूसरा एक वैक्सीन है न्यूमोकॉकल वैक्सीन, जो एक बैक्टीरिया का वैक्सीन है जो निमोनिया कॉज करता है। वो यूजुअली रेकमेंड किया जाता है ओवर द एज ऑफ 60 और 65, एंड जो जिनकी इम्यूनिटी कम है।
1: जी हाँ। और डॉक्टर दीति गंधसिरी, जाते जाते आप हमें और हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
0: जनरल हेल्थ के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगी कि स्मोकिंग अवॉइड करना बहुत जरूरी है, पॉल्यूशन से बचना बहुत जरूरी है। पॉल्यूशन, जैसे मैंने कहा, इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन दोनों। रेगुलर एक्सरसाइज करना लंग हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बोथ फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और बाकी डॉक्टर को इन टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि जल्दी मिलने से जो है डायग्नोसिस जल्दी होता है, तो ट्रीटमेंट का

0: आउटकम बेटर रहता है। इसके अलावा सांस लेना हम सब नॉर्मल समझते हैं जब तक उसको प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्टर होने के नाते मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनो, सिम्टम्स को इग्नोर मत करो और टाइम पे हेल्प लो।
1: और बैलेंस डाइट लेना कितना जरूरी है?
0: बैलेंस डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। डाइट का बहुत बड़ा रोल है मेडिसिन

0: कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एन एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचीशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल

0: कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद

0: समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी।

0: समाचार अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी 537.6 मीटर्स अर्थात 558 किलोहर्ट्स वर AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आणि न्यूज ऑन एअर या मोबाईल ॲपवरही श्रोते हो दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। आता शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नादब्रह्म। आज कर्नाटक शैलीतलं शास्त्रीय गायन आपल्याला ऐकवत आहोत। विद्या हरिकृष्णन यांचं कर्नाटक शैलीतलं गायन आज ऐकूया। त्यांनी गायलेला राग कल्याणी, त्यांना मृदगमची साथ PS श्रीराम यांनी आणि व्हायलिनची साथ वनमाला दीक्षित यांनी केलेली आहे। ऐकूया विद्या हरिकृष्णन यांनी गायलेला राग कल्याणी।

0: रिक्त पदे त्यांची किती आहेत, सध्या किती काम करतायत, पुरुष किती आहेत, महिला किती आहेत, तर ह्याचं क्वार्टरली रिटर्न भरून घेणे आणि त्याची माहिती शासनाला देणे. आणि एक आहे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, एक आहे की जे स्वायत्त महामंडळ आहे की जे ऍक्च्युली ते महामंडळ म्हणजे मराठा कुणबी समाजासाठी कर्जाची सुविधा देण्यासाठी गट कर्ज व्याज योजना परतावा योजना आहे, वैयक्तिक व्याज कर्ज परतावा योजना आहे. त्यानंतर आहे आमची सगळ्यात महत्वाची म्हणजे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, जी आता सध्या आपण ज्याला लाडका भाऊ आता ते म्हटलं जाते, स्टायपंडरी स्कीम जी आहे इंटर्नशिप, की ज्याच्यामध्ये शासन तुम्हाला एखाद्या आस्थापनेमध्ये, उद्योग आस्थापनेमध्ये असेल किंवा कुठल्याही कार्यालयामध्ये यावेळी तुम्ही इंटर्नशिप करणार तुम्ही तिथे, आणि त्याचं जे विद्यावेतन आहे तर ते कम्प्लिटली शासन देतं. ज्याच्यामध्ये जर पदवी तुम्ही असाल तर त्यामध्ये 10,000 दिलं जातं, डिप्लोमा होल्डर असाल तर तुम्हाला 8,000 भेटलं जातं, आणि 12वी आयटी असेल तर 6,000, अशा प्रकारे विद्यावेतन दिलं जातं. ह्याच्या पाठीमा उद्देश हाच आहे की मुलांनी जास्तीत जास्त उद्योग आस्थापन आहे त्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हावं, ऍक्च्युली काय वर्क कल्चर आहे, स्किल त्यांचं इम्प्रूव्ह व्हावं, आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभवाच्या माध्यमातून त्यांची रोजगार क्षमता वाढावी. हा एक स्कीमचा चांगला मोटो आहे आणि चांगल्या प्रकारे ती स्कीम आता रन झालेली आहे. एवढ्या मेजर स्कीम्स आहेत आमच्याकडे. स्किलमध्ये पण भरपूर काम चालतं, त्यामध्ये सुद्धा आपले प्रमोद महाजन कौशल्य विकास उद्योजक अभियान ह्याच्यामध्ये अंतर्गत विविध स्कीम्स आहेत.
1: तर मग फ्रेंड्स, सूरज तेबाजे सरांकडून आपल्याला भरपूर शिकण्यासारखं आहे. स्पर्धेमधली कामगिरी चमकदार कशी असावी याविषयी माहिती आपण घेतलीच आहे. आणखी त्यांनी कुठल्या कुठल्या स्पर्धांमध्ये यश मिळवलं आहे आणि इथून पुढे सुद्धा त्यांचा प्रवास कसा असणार आहे याविषयी आपण माहिती घेणारच आहोत या कार्यक्रमाच्या पुढच्या भागात. आजच्या युववाणी या कार्यक्रमाच्या या भागात मी तेजा दुर्वे आपला निरोप घेते. नमस्कार. निर्मिती आकाशवाणी सांगली.
2: युवावाणी हा कार्यक्रम आताच आपण ऐकला. आता ऐकूया बातम्या दिल्ली केंद्रावर.
3: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है. कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल R.N. रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए. दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है. प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया.
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए. इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे. इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया.
3: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है. इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की. त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई. तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव MA Baby ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं. केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं. UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है. कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा. वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

0: लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी हे नागपुर केंद्र है प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
2: आकाशवाणी नागपूर हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शुभेंदू अधिकारी यांनी घेतली शपथ। देशाचे नवे सीडीएस म्हणून निवृत्त लेफ्टनंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी यांची नियुक्ती। मीरा भाईंदरमधील 254 एकर सरकारी जमीन बिल्डरला देण्याच्या हायकोर्टाच्या निकालाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार। महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती। आणि आगामी काही तासात नागपूरसह विदर्भाच्या अनेक जिल्ह्यात हलक्या पावसाची शक्यता। आता सविस्तर बातम्या। पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शुभेंदू अधिकारी यांनी आज शपथ घेतली। कोलकात्यातल्या ब्रिगेड परेड मैदानात एका भव्य समारंभात राज्यपाल आर एन रवी यांनी अधिकारी यांना राज्याचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली। 5 कॅबिनेट मंत्र्यांनी देखील यावेळी शपथ घेतली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि इतर केंद्रीय मंत्री तसंच भाजप एनडीए शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री या कार्यक्रमाला हजर होते। भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे सहकारी आणि पश्चिम बंगालमधले भाजपाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते माखनलाल सरकार या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते। महाराष्ट्रातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार हे दोन्ही उपमुख्यमंत्री शपथविधीला हजर होते। दरम्यान भाजपची विचारधारा पश्चिम बंगालच्या जनतेनं स्वीकारली असल्याचं पश्चिम बंगालमधल्या भाजपच्या नेत्रदीपक यशातून दिसून येतं। हा सत्ताबदल राज्यात विकासाचा मार्ग मोकळा करेल असं प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं। पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या शपथविधी सोहळ्यापूर्वी गडकरी माध्यमांशी बोलत होते। निवृत्त लेफ्टनंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी यांची देशाचे पुढील सीडीएस अर्थात संरक्षण दल प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे। सध्याचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांचा कार्यकाळ 30 मे रोजी संपतो आहे। याच दिवशी जनरल एन एस राजा सुब्रमणी पदभार स्वीकारतील आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या लष्करी व्यवहार विभागाचे सचिव म्हणूनही काम पाहतील। लेफ्टनंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी 1 सप्टेंबर 2025 पासून राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयात लष्करी सल्लागार आहेत। डॉक्टर हेमंत शरद पांडे यांची काल वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड वेकोलीच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदी त्यांनी कार्यभार स्वीकारला। 1989 कोल इंडिया लिमिटेडमध्ये खाण अभियंता म्हणून आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीची सुरुवात करणारे डॉक्टर पांडे यांना डब्ल्यूसीएल आणि साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एसईसीएलमधील कामाचा 37 वर्षांचा अनुभव आहे। वेकोलीचं मुख्यालय नागपुरात आहे। भ्रष्टाचार आणि शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानी असल्याचं एनसीआरबी म्हणजेच राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या 2024 अहवालातून समोर आलंय। महिलांवरच्या अत्याचारात राज्याचा दुसरा क्रमांक आहे। 2024 राज्यात 3,824 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली तर 47,900

0: श्रोते हो, या गीताबरोबरच आजचा मराठी चित्रपट संगीताचा हा कार्यक्रम आम्ही इथे संपवित आहोत. ही आकाशवाणी नागपूर केंद्राची निर्मिती होती.
1: आकाशवाणी संप्रतिवार्ता श्रूयंताम. प्रवाचक जतिन शर्मा. आदौ मुख्य वार्ताः. शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः. तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्. तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे हि देशे विवादानां सौहार्दपूर्ण रीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रीय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबेगो देशस्य प्रधानमंत्रिणा सह मेलनं साधितवान्. अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्. इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्. अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15-वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्. कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रविः श्री शुभेन्दु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्. तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्.
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए. इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे. इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया.
1: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते. 34-200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18-100 विधायकाः आवश्यकाः आसन्. चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्. अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्. यद्यपि दलनेता सी जी सेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः

0: श्रोताओं नमस्कार। विविधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दुनिया में हर इंसान को बहुत कुछ चाहिए होता है, सफलता, पैसा, पहचान, लेकिन दिन के अंत में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा सुकून देती है तो वो है परिवार। एक ऐसा रिश्ता जो बिना किसी शर्त के निभता है, जो हमारी खुशियों में मुस्कुराता है और दुखों में ढाल बन जाता है। आज का हमारा विशेष प्रस्तुतिकरण समर्पित है उन अनमोल रिश्तों को जहां प्यार है, अपनापन है, त्याग है और हर मुश्किल में साथ निभाने का वादा है। जी हां, परिवार केवल एक शब्द नहीं बल्कि भावनाओं का संसार है, जहां मां की ममता, पिता का संरक्षण, दादा दादी का अनुभव और भाई बहनों की शरारतें मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। दोस्तों, 15 मई को विश्व परिवार दिवस आने वाला है। हमारी आज की वार्ता मजबूत परिवार समृद्ध समाज इसी दिवस को समर्पित है। हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदु पांडे जी, जो एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। उनके विभिन्न लेख कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। तो सुनते हैं इंदु पांडे जी के विचार।
1: घर केवल दीवारों और छतों का नाम नहीं होता, घर केवल दीवारों और छतों का नाम नहीं होता, घर वह होता है जहां कोई हमारे लौटने की प्रतीक्षा करता है। मकान तो ईंट और पत्थर से बन ही जाता है, मकान तो ईंट और पत्थर से बन ही जाता, पर घर रिश्तों के मुलायम रेशमी धागों से बुनता है, रेशमी धागों से बुनता है। नमस्कार, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहिल अभिवादन। मैं डॉक्टर इंदु पांडे आज आपके सामने ऐसा विषय लेकर आई हूं जो समाज और परिवार से जुड़ा है। मेरी वार्ता का विषय है मजबूत परिवार समृद्ध समाज, क्योंकि यदि परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, और यदि परिवार बिखर गया तो समाज भी धीरे धीरे विघटित होने लगेगा। शायद आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आज हम मजबूत परिवार और समृद्ध समाज की बात क्यों कर रहे हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी वस्तु, परंपरा या मूल्य को तब विशेष रूप से याद किया जाने लगता है जब उसके खो जाने का भय उत्पन्न होने लगे। जब हमें लगता है कि कोई चीज धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तब हम उसे बचाने के लिए उत्सवों और दिवसों का सहारा लेते हैं। इसीलिए आज मातृ दिवस, पितृ दिवस और वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है, और उसी क्रम में परिवार दिवस भी मनाया जा रहा है, क्योंकि आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में परिवार धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई

दे रहा है। यदि हम कुछ दशक पीछे जाएं तो परिवार केवल कुछ लोगों का समूह नहीं था, वह एक जीवंत संसार था। संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की आत्मा हुआ करता था। एक ही आंगन में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ, भाई बहन सब साथ रहते थे। रिश्तों में औपचारिकता नहीं थी, सुख बांटे जाते थे और दुख भी मिलकर सह लिए जाते थे। घर के बड़े केवल कमाने वाले व्यक्ति नहीं थे, वे संस्कारों के संरक्षक भी थे। दादी की कहानियां बच्चों को नैतिकता की सिखाती थी। माँ त्याग और प्रेम का विद्यालय थी, पिता अनुशासन और जिम्मेदारी के प्रतीक थे। उस समय घरों में सुविधाएं कम थी पर संतोष अधिक था। कमरों की संख्या कम थी पर दिलों में जगह बहुत थी। एक रोटी चार लोग बांटकर खा लेते थे, लेकिन कोई अकेला नहीं सोता था। पहले परिवार का अर्थ था हम।

अकेला नहीं सोता था। पहले परिवार का अर्थ था हम, पर आज धीरे धीरे हम का स्थान मैंने ले लिया है। आज विज्ञान ने जीवन को अत्यंत सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया सब ने दूरी मिटाने का दावा किया, पर विडंबना यह कि दिलों की दूरी बढ़ती जा रही है। आज परिवार एक ही घर में रहकर भी अलग अलग कमरों में बंट गया है। बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं, माता पिता अपने कार्यों में व्यस्त हैं, साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा लगभग समाप्त होती जा रही है। आज रिश्तों में संवाद कम और तनाव अधिक दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच समय की कमी है, बच्चे माता पिता से अधिक स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग अपने ही घरों में अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं। आज का परिवार भौतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन भावनात्मक रूप से कहीं न कहीं कमजोर होता जा रहा है। हमने मकान तो बहुत सुंदर बना लिए, लेकिन घर बनाने की कला धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आज बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन दादा दादी की गोद से दूर हो रहे हैं। आज हमारे पास समय देखने के लिए घड़ियां हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। आज परिवार दिवस इसलिए मनाना पड़ रहा है क्योंकि हमें भय है कि कहीं परिवार केवल तस्वीरों और स्मृतियों तक सीमित न रह जाए। आज तलाक की बढ़ती संख्या, वृद्धाश्रमों की बढ़ती भीड़, अकेलेपन से जूझते बच्चे और तनावग्रस्त युवा, ये सब संकेत है कि परिवारों में भावनात्मक दूरी बढ़ रही है। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब सबसे पहले परिवार ही साथ खड़ा दिखाई देता है। धन, पद, प्रसिद्धि सब बाद में आते हैं, सबसे पहले परिवार का साथ चाहिए होता है। परिवार टूटने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चे केवल शब्दों से नहीं, वातावरण से सीखते हैं। यदि घर में प्रेम होगा तो बच्चे प्रेम ही सीखेंगे, यदि घर में तनाव होगा तो उनके मन में असुरक्षा महसूस होती है। यदि हम समय रहते नहीं चेते तो निश्चय ही आने वाला परिवार केवल तकनीक से जुड़ा हुआ परिवार रह जाएगा। संभव है भविष्य में लोग एक ही घर में रहकर भी पूरी तरह डिजिटल जीवन जीने लगेंगे, बातचीत कम हो जाएगी, संवेदनाएं कृत्रिम होती जाएंगी। हो सकता है आने वाले समय में बच्चों के पास सुविधा हो लेकिन कहानी सुनाने वाली दादी ना हो, बड़े बड़े घर हों लेकिन उनमें अपनापन न हो। भविष्य का सबसे बड़ा संकट भावनात्मक अकेलापन हो सकता है। आज दुनिया में मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण रिश्तों का कमजोर होना भी है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, अर्थात पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। भारतीय परिवारों में त्याग, सहनशीलता और सामूहिकता की परंपरा थी। आज आवश्यकता है कि आधुनिकता के साथ साथ हम इन मूल्यों को भी बचाए रखें। मोबाइल से अधिक महत्व संवाद को देना होगा। बच्चों को संस्कारों की विरासत देनी होगी, बुजुर्गों को बोझ नहीं अनुभव का खजाना समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते स्वतः नहीं चलते, उन्हें समय, धैर्य और प्रेम देना पड़ेगा। परिवार शब्द सुनते ही मन में एक आत्मीय दृश्य उभर आता है। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं, बल्कि भावनाओं, विश्वास और सहारे का वह संसार है जहां मनुष्य सबसे पहले जीना सीखता है। संसार में मनुष्य चाहे जितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, अंततः उसे लौट कर परिवार की छाया में ही सुकून मिलता है। भटको बेबात कहें, लौटोगे हर यात्रा के बाद, यही कवि का कथन बड़ा ही सत्य है। भारतीय संस्कृति में परिवार की अवधारणा अत्यंत व्यापक और गहरी रही है। हमारे यहाँ परिवार केवल माता पिता और बच्चों तक सीमित नहीं था। दादा दादी, चाचा चाची और भाई बहन सब मिलकर एक ऐसे जीवन का निर्माण करते थे जिसमें अकेलेपन के लिए कोई स्थान नहीं था। संयुक्त परिवार केवल रहने की व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था थी। उसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमिका होती थी और प्रत्येक सदस्य स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता था। बुजुर्गों को सम्मान मिलता था, बच्चों को संस्कार मिलते थे और युवाओं को सहयोग भी मिलता था। प्राचीन समय का परिवार जीवन की कठिनाइयों को बांटने का माध्यम था। यदि घर में कोई संकट आता तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा हो जाता। किसी की बीमारी हो, आर्थिक परेशानी हो या मानसिक दुख, सब मिलकर उसका सामना करते थे। उस समय जीवन सुविधाओं से भले ही कम भरा हो, लेकिन भावनात्मक रूप से कहीं अधिक समृद्ध था। इसे तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा।
घरों में साधन कम होते थे पर मनों में अपनापन अधिक होता था। एक थाली में बैठकर भोजन करना और साथ बैठकर सुख दुख बांटना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख माना जाता था। बच्चों का पालन पोषण भी उस समय सामूहिक होता था। बच्चे केवल अपने माता पिता के नहीं पूरे परिवार के माने जाते थे। दादी की कहानियां, बुआ का दुलार, चाची का स्नेह, इन

सबके बीच बच्चा केवल बड़ा नहीं होता था बल्कि संस्कारित भी होता था और मानसिक रूप से समृद्ध भी होता था। उसे रिश्तों का महत्व सहज रूप से समझ में आ जाता था। आज जिस इमोशनल सिक्योरिटी की बात आधुनिक मनोविज्ञान कर रहा है वह उस समय परिवारों में स्वाभाविक रूप से उपस्थित थी। समय के साथ समाज में अनेक परिवर्तन आए, होना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन विकास की ओर बढ़ते हुए चरण का दूसरा नाम है। औद्योगिकरण बढ़ा, शहरों का विस्तार हुआ, रोजगार के अवसर गांवों और कस्बों से दूर निकलकर बड़े नगरों में केंद्रित होने लगे। लोगों को अपने घरों और परिवारों से दूर जाना पड़ा। इस व्यवस्था में संयुक्त परिवार टूटने लगा और जन्म होने लगा एकल परिवार का। आधुनिक जीवन की तेज गति और निजी स्वतंत्रता की इच्छा ने भी इस परिवर्तन को कम बढ़ावा नहीं दिया है। परिणाम स्वरूप अब परिवार की स्वाभाविक परिभाषा सीमित होकर पति पत्नी और बच्चों तक रह गई। एकल परिवारों में मनुष्य को कुछ सुविधाएं भी अवश्य मिली। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ी, निर्णय लेने में सहजता आई और जीवन अधिक व्यवस्थित दिखाई देने लगा। लेकिन खेद है, इसके साथ ही एक नया संकट भी धीरे धीरे जन्म लेने लगा, अकेलेपन का संकट। आज घरों में भौतिक सुख सुविधाएं पहले से कहीं अधिक हैं, परंतु मानसिक शांति कम होती जा रही है। परिवार साथ रहते हुए भी कहीं न कहीं बिखरता हुआ दिखाई देता है। मोबाइल और इंटरनेट ने लोगों को दुनिया से तो जोड़ दिया, पर अपने ही घर के भीतर संवाद कम कर दिया। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य के पास समय सबके लिए है, पर अपने परिवार के लिए नहीं। बुजुर्गों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक हो गई है। जो माता पिता कभी अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देते थे, वही आज अकेलेपन का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्हें केवल दवा और सुविधा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अपनापन, संवाद और यह यकीन और विश्वास कि वे अभी भी परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विशेष रूप से बच्चों पर इस परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ा है। आधुनिक बच्चे तकनीक से तो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से कहीं अधिक अकेले हो रहे हैं। उनके पास खिलौनों की कमी नहीं, लेकिन रिश्तों का स्पर्श कम होता जा रहा है। पहले बच्चे दादा दादी नाना नानी की कहानियों में अपने जीवन के मूल्य सीखते थे, आज वही स्थान मोबाइल स्क्रीन ने ले लिया है। परिणाम स्वरूप संवेदनशीलता और धैर्य जैसे गुण धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहे हैं, जो एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत हानिकारक है। युवा पीढ़ी जिनके हाथ में परिवार और राष्ट्र की बागडोर है, आज अनेक मानसिक दबावों से गुजर रही है। प्रतिस्पर्धा, करियर, आर्थिक असुरक्षा और भविष्य की चिंता ने जीवन को तनावपूर्ण बना दिया है। ऐसे समय में परिवार का भावनात्मक सहारा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि आज पुनः परिवार की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा है। आधुनिक समाज समझने लगा है कि केवल आर्थिक सफलता मनुष्य को संतुष्टि नहीं दे सकती, जीवन को संतुलन देने के लिए आत्मीय संबंध भी उतने ही आवश्यक हैं। महामारी ने भी परिवार के महत्व को नई तरह से सामने रखा। जब पूरी दुनिया भय और अनिश्चितता से घिरी हुई थी, तब परिवार ही सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया। लोगों ने महसूस किया कि संकट के समय सबसे पहले अपने ही साथ खड़े होते हैं। इस अनुभव ने मनुष्य को पुनः रिश्तों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। अब थोड़ी देर के लिए मन में यह सवाल अवश्य उत्पन्न होता है कि आने वाले समय में परिवार कैसा होगा? क्या संयुक्त परिवार फिर से लौटेंगे? संभवतः उसका पुराना स्वरूप पूरी तरह वापस न आए, लेकिन यह भी सत्य है कि मनुष्य फिर से संबंधों की ओर लौटना चाहता है। भविष्य का सुखी परिवार शायद वही होगा जहां घर भले अलग हों पर दिल जुड़े रहें, जहां पीढ़ियों के बीच संवाद हो, जहां बुजुर्गों को बोझ नहीं बल्कि अनुभव माना जाए, जहां बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं संस्कार भी मिले और जहां स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं। आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार को केवल सामाजिक व्यवस्था न समझा जाए बल्कि उसे भावनात्मक शक्ति के रूप में देखा जाए। यदि हम दिन में कुछ समय अपने परिवार के साथ बैठें, बुजुर्गों की बातें सुनें, बच्चों को समय दें और रिश्तों को औपचारिकता बनने से बचाएं, तो परिवार पुनः अपनी आत्मीयता प्राप्त कर सकता है। परिवार का वास्तविक आधार प्रेम, संवाद, सम्मान और त्याग है। जहां ये चारों उपस्थित होते हैं, वहां परिवार अपने आप मजबूत हो जाता है। विश्व परिवार दिवस भी हमें यही संदेश देता है कि बदलते समय में भी परिवार की आवश्यकता समाप्त नहीं हुई है। मनुष्य चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, अंततः उसे प्रेम, सहारा और अपनापन चाहिए। यही परिवार की सबसे बड़ी शक्ति है। परिवार जीवन को केवल सुरक्षा नहीं देता बल्कि उसे अपने होने का अर्थ भी देता है। यहाँ एक और गौर करने वाली बात है

0: जहां बहुत कुछ हमने खोया है वहां बहुत कुछ पाया भी है। आज के बदलते समय में परिवार की परिभाषा केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं रह गई है। आधुनिक जीवन शैली ने परिवार के स्वरूप को विस्तृत और बहुआयामी बना दिया है। महानगरों में नौकरी करने वाले लोग अपने सहकर्मियों के साथ दिन का अधिकांश समय बिताते हैं। सुख दुख तनाव उपलब्धियां संघर्ष सब के सब एक दूसरे के साथ बैठकर बांटते हैं। धीरे धीरे वही कार्यस्थल भी एक प्रकार का परिवार का रूप ले लेता है। इसी प्रकार जो बच्चे 10वीं 12वीं के बाद शिक्षा के लिए घर से दूर हॉस्टल या अन्य शहरों में जाते हैं उनके लिए मित्र रूममेट और साथ रहने वाले लोग एक नए परिवार की तरह बन जाते हैं। ये एक दूसरे का सहारा बनते हैं, बीमारी में साथ खड़े रहते हैं, मानसिक तनाव में हौसला देते हैं। यह भी आधुनिक परिवार का ही एक नया रूप है। परंतु इन सबके बीच घर का महत्व आज भी सबसे अलग और सबसे गहरा है। परिवार कई जगह बन सकते हैं लेकिन घर केवल एक ही होता है। घर वह स्थान है जहाँ व्यक्ति बिना किसी भय या संकोच के अपने मन की बात कह सके। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, घर लौटकर मन को शांति मिलती है। वहीं आप अपनी समस्याएं साझा करते हैं, सलाह लेते हैं और भावनात्मक सहारा प्राप्त करते हैं। आज की पीढ़ी के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है कि बदलते समय के साथ परिवार का स्वरूप बदला है, लेकिन उसके मूल मूल्य विश्वास संवाद अपनापन और सहयोग अब भी उतने ही आवश्यक हैं जितना कि पहले था। विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को इतनी स्वतंत्रता और विश्वास मिलना चाहिए कि वे बिना डर के अपने विचार घर में रख सकें। चाहे ऑफिस की समस्या हो, मित्रों से मतभेद हो या जीवन का कोई संघर्ष, घर का दरवाजा और दिल हमेशा उनके लिए खुला होना चाहिए। परिवार अब सीमाओं से परे फैल गया है लेकिन घर अब भी वह केंद्र है जहाँ व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित स्वीकार्य और पूर्ण महसूस करता है। इसलिए विश्व परिवार दिवस केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं बल्कि बदलते समाज में रिश्तों की गरिमा, संवाद की आवश्यकता और भावनात्मक जुड़ाव को बचाए रखने का संदेश है। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी खूबसूरत संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति। याद रखिए, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं और अपनों से बड़ा कोई सहारा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ मुस्कुराइए, समय बिताइए और रिश्तों की इस गर्माहट को हमेशा बनाए रखिए।

विविधा कार्यक्रम में अभी आपने सुना डॉक्टर इंदु पांडे की वार्ता मजबूत परिवार समृद्ध समाज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजू कुमार भारती। यह आकाशवाणी मुंबई केंद्र की प्रस्तुति थी।

0: शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि वीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी

0: समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांध्र कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9.

पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेते थे और उस कहानी को

बयान करती थी उस कहानी की वही नायिका है. अब वो कहानी को पढ़ रही हैं, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा. तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है. तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा. तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था. हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था. क्या

0: चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेप अप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था, तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने एफएम्स हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही है आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी में जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे, जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहां, जब आप वहां पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था, फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी।

0: स्वराज सौजन्य आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारे मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
1: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
2: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
1: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
2: ये दिन महज एक तारीख नहीं बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
1: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR।
2: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
3: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र वो विश्व में हैं और हमारे 11 ऑफिसेज जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन है और दूतावास और प्रधान कौंसुल वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती है और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है

0: जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एक जुगवार है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं। भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए। और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
4: और मैं प्रांजल।
5: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
6: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, 1-2 स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपना मोस्टली जो है अपना B2B में एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ।

0: बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती हूँ।
1: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादरगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
2: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
4: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
5: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
4: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
5: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
4: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है, बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
6: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रैली ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
5: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
4: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
5: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
4: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
7: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
4: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
5: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
4: और मैं नेत्रा।
8: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पीवी काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया, और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत

0: अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक we bring to you a santoor recital by Rajkumar Majumdar. Rajkumar Majumdar is one of the most versatile santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
0: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसमोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santoor recital with rag Jansammohini, presenting Alap, Jod and Jhala. Vilambit composition is set to Rupak Tal and Madhyalay. Drut composition is set to Teen Tal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalay and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी

0: शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naben and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met